0: everybody.
1: Hi!
2: Smashing! Groovy! Fab!
3: Terrific! Fantastic!
4: What a beaut!
5: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।